किसी किसी ती आओ मुना नाला ओए ना तनाव लगे मना इंदक गिनिंग महिगोग मत अनु ती आओ मुला नाला स्टैंडबाय मो मगे गाला कतो इसगुतन किनिंग उनसा मनिंग विटामिन सी स्टैंडबाय मो मगे गाला Diara, diara, diara, diara. Ang vitamin C mga igsoon na ilan ni sa gitawag na tawag ascorbic acid.